0: ई रेडियो नेपाल ठिक अरविन्द्र मिश्रसँग मैथिलीमे समाचार सुनल जाय। शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्री सस्मित पोखरेल जनशक्ति थपिके सम्बन्धित स्थानमे सम्परीक्षणक व्यवस्था कयल गेलाक कारणे कक्षा 12 नतीजा प्रकाशन विगतसँ यथाशीघ्र भेल बतौलनि अछि। ई नतीजा जल्दीबाजी वा असामान्यमे आयल कहिके प्रतिक्रियाके सम्बन्धमे आइ सामाजिक संजाल मार्फत स्पष्ट करैत ओ विगतमे उत्तर पुस्तिका परीक्षण पश्चात सम्परीक्षणक लेल सब सामग्री काठमाण्डू अनबाग व्यवस्था रहलापर एहि वर्ष सम्बन्धित स्थानसँ कयल जा सकबाक व्यवस्था मिलाओल गेल बतौलनि। प्रशासनिक तथा प्रक्रियागत ढीला सुस्ती सेहो होमय देल गेल सङ्गहि पुनः योग शुल्क गत वर्षक पूरक परीक्षाक लागू भेल ओ जनौलनि। राष्ट्र परीक्षा बोर्ड एहि वर्षक कक्षा 12 नतीजा शुक्र दिन सार्वजनिक कयल गेल छल। राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी रासपाक प्रवक्ता मनीष झा पार्टीक प्रथम महाधिवेशनक लेल उद्योगी व्यापारी मार्फत चंदा संकलन नहि कयल स्पष्ट कयलनि अछि। महाधिवेशन स्थलमे आइ संचारकर्मी सँ बातचीत करैत प्रवक्ता झा महाधिवेशनक नाम पर व्यापारी आ घराना समूहके रसीद पठेबाक अभ्यास अंत कयल गेल बतौलनि। ओ हमसभ अपने व्यवस्था कयलहुँ अछि ओ कहलनि। महाधिवेशनक लेल कोनो घराना व्यापारीके रसीद नहि पठौने छी। महाधिवेशन सञ्चालनके लेल 4 करोड़ टका लगबाक अनुमान रासपा कयलक अछि। ई रकम सांसद केंद्रीय समिति विभिन्न विभागक सदस्य उठबाक लेवी तथा महाधिवेशन प्रतिनिधिसँ उठबाक ओ बात बतौलनि। हमसभ सांसदसँ प्रति मास 16,500 टका उठाओल करैत छी। एहिसँ मासमे 32 लाख संकलन होइत अछि। केंद्रीय सदस्य वार्षिक आ 25,000 टका संकलन करैत अछि ओ कहलनि। महाधिवेशन प्रतिनिधिसँ नहि 1.5 करोड़ टका संकलन होइत अछि। ओ शुभेच्छु सभके आंतरिक रूपमे QR पठाओल बतौलनि। राष्ट्र स्वतंत्र पार्टी रासपाक सभापति रवि लामी छाने अपन पार्टी लोकतंत्रसँ कहियो विमुख नहि हेबाक बात बतौलनि अछि। पार्टीक महाधिवेशनसँ पहिने आइ चितवनमे भेल बैठकमे ओ लोकतंत्रसँ हमसभ कदापि विमुख नहि हेबाक प्रतिबद्धता व्यक्त कयलनि। ओ कहलनि संघीय लोकतांत्रिक गणतंत्र देशक संविधान के देशक अखुनका अवस्थामे आनल योगदान के निहार सभक जगमे हमसभ ठाढ़ भेल छी। हमरा सभके एहिमे गर्व अछि। हमसब गर्व के संग ई परिवर्तन के संहार में ठाढ़ भेल छी। लोकतंत्र सब विमुख नहि हैब सेहो बतौलनि। आंतरिक लोकतंत्र के मजबूत कऽ सकला पर कोनो न कोनो बिंदु में पहुँच कर ही दुर्घटना के आमंत्रित ओहिठाम नहि करबाक हो बतौलनि। एहन घर में सेहो दुर्घटना समाज में होइत गेल दुर्घटना सँ राजनीतिक पार्टी में होइत गेल दुर्घटना बहुत भारी मूल्य चुकेबाक सन होइत अछि। सचेत भऽ कऽ आपके डेग उठाओल जेबाक ओ बतौलनि। जै भूमिकामे रहब स्वयंके जिम्मेवार नागरिकके रूपमे प्रस्तुत करबाक लेल पार्टीक नेता तथा कार्यकर्ताके निर्देशन दैत सभापति लामी छाने अस्वस्थ प्रतिस्पर्धासँ दूर रहबाक बातपर जोर देलनि। पार्टीके आओर व्यवस्थित एवं गतिशील बनेबाक लेल अधिवेशन सफल हेबाक विश्वास सेहो व्यक्त कयलनि। मध्य प्रदेशक मुख्यमंत्री कृष्ण प्रसाद यादव प्रदेश के खेलकूद तथा समाज कल्याण मंत्रालय मधेश खेलकूद परिषद तथा नेपाल खेलकूद महासंघक संयुक्त आयोजन में आइ सँ जनकपुर धामक निर्माणाधीन रामजानकी बहुउद्देश्य रंगशाला में शुरू भेल निको कप राष्ट्रीय महिला T20 प्रतियोगिताक उद्घाटन करैत रामजानकी बहुउद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय रंगशाला निर्माणक शिलान्यास एहि वर्ष हेबाक बात बतौलनि अछि। ओ विश्व तथा नेपाल में क्रिकेटक लोकप्रियता बहुत बढ़लाक कारणे बहुप्रतीक्षित रामजानकी अंतर्राष्ट्रीय रंगशालाक निर्माणक लेल 256 करोड़ टकाक टेंडर सहित शिलान्यास कयल जेबाक बात बतौलनि। ओ मध्य प्रदेशक सब जिला में रहल खेलकूदक संरचना सभक स्तरोन्नतिक लेल आर्थिक वर्षक बजट में सरकारक सीमित स्रोतक बीच स्तरोन्नतिक लेल बजट विनियोजन कयल बतौलनि। मुख्यमंत्री यादव स्वयं भौतिक मंत्री भेल समय राम जानकी रंगशालाक DPR बनेबाक काज भेल आ एहिमे भारत सरकारक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनकपुर धामक भ्रमण के क्रम में घोषणा कयल गेल 100 करोड़ टकाक भारतीय रकम लगानी करबासँ संघ सरकार सँ समन्वयक प्रक्रिया आगू बढ़ाओल स्मरण करौलनि। मध्य प्रदेशक भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मंत्री श्याम प्रसाद पटेल मध्य प्रदेश के संघ सरकार हरेक वर्ष रूप में अनुदान कटौती कैलक बावजूदो प्रदेश सरकार एहि बेर खेलकूद क्षेत्रक विकासक लेल बजट विनियोजन कैल बतौलनि। मध्य खेलकूद परिषदक उपाध्यक्ष शिवजी गुप्ता मध्य प्रदेश में खेलकूदक वातावरण निर्माण करबाक लेल खेलू मध्य जीतू मधेश नारा सहित खेल तथा खिलाड़ीक वृत्ति विकासक लेल प्रत्येक खिलाड़ी के मासिक रूप में 2,500 रकम प्रदान करबाक कार्यक्रम आनल बतौलनि। उद्घाटन कार्यक्रम में नेपाल खेलकूद महासंघक अध्यक्ष परशुराम बस्नेत, नेपाल क्रिकेट संघक उपाध्यक्ष रोशन सिंह तथा महासंघक महासचिव धर्म लामा सहितक वक्ता लोकनि अपन अपन विचार व्यक्त कयने छलथि। 7 प्रदेश सशस्त्र प्रहरीक महिला क्रिकेट टीम मिलाकर 8 टीम के सहभागिता प्रतियोगिता में रहल अछि। उद्घाटन खेल मध्य तथा कोसी प्रदेशक बीच में जारी रहल अछि। मध्य प्रदेश सरकार चालू आर्थिक वर्षक 11 मास में 30,17,14,73,000 राजस्व संकलन कैलक अछि। प्रदेश सरकार के अर्थ मंत्रालय के अनुसार चालू आर्थिक वर्ष के अखन धरि आंतरिक राजस्व संकलन 4,59,33,84,000 रहल अछि। प्रदेश सरकारक आंतरिक राजस्व संकलन के मुख्य आय स्रोत के रूप में घर जमीन रजिस्ट्रेशन सवारी साधन कर मानल गेल अछि। एहि अवधि में घर जमीन रजिस्ट्रेशन सँ 1,18,12,95,00,000 आ सवारी साधन कर सँ 2,01,50,50,000 राजस्व संकलन भेल। मध्य प्रदेश सरकारक अर्थ मंत्रालयक सूचना अधिकारी अंशु कुमार झा जानकारी देलनि। हुनका अनुसार चालू आर्थिक वर्ष 2082-83 में सवारी चालक अनुमति पत्र वितरण तथा सवारी दर्ता दस्तूर सँ 68,82,70,000 यातायात क्षेत्रक आमदनी सँ 11,10,59,000 आ बृहत्तर 72 के बिक्री सँ 10,09,35,000 राजस्व संकलन भेल अछि। एहिना प्रदेश सरकार बांटफाट सँ प्राप्त होवला मूल्य अभिवृद्धि सँ कर बापत 7,75,64,99,000 अंशुल्क कर बापत आ 2,70,41,00,000 प्राप्त भेल मंत्रालय जनौलक अछि। एहि तरहें संघे सरकार सँ प्राप्त होवयवला सामान्यकरण अनुदान अंतर्गत 11 मासक अवधि में 7,06,16,78,000 अनुदान चालू दिस 2,17,27,72,000 सशस्त्र पूंजी दिस 1,56,30,40,000 प्राप्त भेल सूचना अधिकारी झा बतौलनि। सरकार महिला के लक्षित कर 7 प्रदेश में बुल्लू बस संचालन के तैयारी के आगू बढ़ौलक अछि। सरकारक 100 दिन के कार्यसूची अनुसार महिला के सुरक्षित सहज आ सम्मानजनक सार्वजनिक आवागमन सुनिश्चित करबाक लेल निःशुल्क बुल्लू बस सेवा संचालन के तैयारी आगू बढ़ाओल गेल अछि। कार्ययोजना अनुसार पहिल चरण में 100 दिन भीतर कमती में 25 बस संचालन में अनबाक लक्ष्य राखल गेल जनौलक अछि। एहि अंतर्गत काठमांडू पत्रिका में साझा यातायात संघक सहकार में कमती में 7 बस के बुल्लू बस के रूप में संचालन करबाक योजना आगू बढ़ा संगे काठमांडू पत्रिका बाहर सब प्रदेशक यातायात व्यवसायी संघ सँ समन्वय कर कमती में 18 बस संचालन के तैयारी कैल गेल अछि। मंत्रालय के अनुसार बुल्लू बस सेवा संचालन के लेल आवश्यक कार्यविधि समय सारणी सहितक कार्ययोजना शीर्षक गत लागत अनुमान तथा संचालन के जिम्मेवारी निर्धारण कैल गेल मसौदा प्रस्ताव साझा यातायात सँ प्राप्त भऽ चुकल अछि। प्राप्त प्रस्ताव के आधार पर आवश्यक प्रशासनिक तथा प्राविधिक तैयारी भऽ रहल मंत्रालय जनौलक अछि। अगला आर्थिक वर्ष में 7 प्रदेश में बुल्लू बस सेवा संचालन के लिए आवश्यक बजट तथा कार्यक्रम से प्रस्ताव कैल गेल मंत्रालय जनौलक अछि। सरकार अगला आर्थिक वर्ष में थप 15,776 खेती योग्य जमीन में सिंचाई सुविधा विस्तार कर देशक कुल सिंचित खेती योग्य क्षेत्र 64% पहुँचबाक लक्ष्य निर्धारण कैलक अछि। ऊर्जा जल स्रोत तथा सिंचाई मंत्रालय सिंचाई विस्तार नदी नियंत्रण तथा राष्ट्रीय गौरव आयोजना कार्यान्वयन के उच्च प्राथमिकता में रखलक अछि। हाल देशभर में कुल 15,87,910 जमीन में सिंचाई सुविधा पहुँचल अछि। खाद आयात निर्यात गुण तथा प्रमाणीकरण कार्यालय परसा का आयोजन में बीरगंज में खाद्य पदार्थ आयात निर्यातकर्ता सबके खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर संबंधी क्षमता अभिवृद्धि कार्यक्रम सम्पन्न भेल अछि। कार्यक्रम में बीरगंज भंसार प्रमुख प्रशासक कृष्ण प्रसाद मैनाली खाद्यान्न कार्यविधि व्यावहारिक अंतर्राष्ट्रीय मापदंड के विषय सबक पालना सराहनीय भेल कहैत तोकल गेल मापदंड के पालना कला पर मात्र प्रतिफल प्रभावकारी हेबाक दावी कयलनि। रेडियो नेपाल सँग सुनै छलहुँ मैथिली भाषामे समाचार समाप्त भेल।
1: सार्वजनिक सेवा प्रसारण रेडियो नेपाल
2: नेपालको समावेशी आवाज।

0: ये रेडियो नेपाल है। अब रमिता यादव से सुनिए हिंदी में समाचार। आरंभ में मुख्य समाचार। राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी रासोपा का प्रथम महाधिवेशन कल से चितवन में होगा शुरू। रासोपा के नेता और महाधिवेशन प्रतिनिधि चितवन पहुंचने का क्रम है जारी। रासोपा लोकतंत्र से कभी विमुख नहीं होगी, पार्टी सभापति रवि लामिछाने का कथन। राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी राप्रपा का आगामी महाधिवेशन 26 से 28 मार्गशीर्ष तक काठमांडू में आयोजित करने का केंद्रीय कार्य समिति का निर्णय। आगामी आर्थिक वर्ष में 15,776 हेक्टेयर भूमि तक सिंचाई सुविधा का विस्तार करने का सरकार का लक्ष्य। और ईरान ने हॉर्मुज स्ट्रेट बंद करने का किया ऐलान, IRGC ने दी चेतावनी। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी रासोपा का प्रथम राष्ट्रीय महाधिवेशन कल से भरतपुर में शुरू होने जा रहा है। महाधिवेशन में भाग लेने के लिए पार्टी के नेता तथा देश के सभी 77 जिलों से महाधिवेशन प्रतिनिधियों के चितवन पहुंचने का क्रम लगातार जारी है। राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी रासोपा के सभापति रवि लामिछाने ने कहा है कि राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी कभी भी लोकतंत्र से विमुख नहीं होगी। पार्टी के महाधिवेशन से पहले आज चितवन में आयोजित बैठक में उन्होंने ये प्रतिबद्धता व्यक्त की कि वे लोकतंत्र के मार्ग से किसी भी स्थिति में नहीं हटेंगे। उन्होंने कहा कि संघीय लोकतांत्रिक गणतंत्र देश का संविधान तथा नेपाल को वर्तमान अवस्था तक पहुंचाने में योगदान देने वाले व्यक्तियों और शक्तियों की नींव पर ही पार्टी खड़ी है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि आंतरिक लोकतंत्र को मजबूत नहीं बनाया गया तो किसी न किसी मोड़ पर गंभीर राजनीतिक दुर्घटना की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। उन्होंने कहा कि घर और समाज में होने वाली दुर्घटनाओं की तुलना में राजनीतिक दलों में होने वाली दुर्घटनाओं की कीमत कहीं अधिक चुकानी पड़ती है, इसलिए भविष्य के कदम अत्यंत सावधानी और जिम्मेदारी के साथ उठाने चाहिए। पार्टी के नेता और कार्यकर्ताओं को निर्देश देते हुए सभापति लामिछाने ने कहा कि वे चाहे जिस भूमिका में हो स्वयं को एक जिम्मेदार नागरिक के रूप में प्रस्तुत करें और अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा से दूर रहे। उन्होंने ये भी विश्वास व्यक्त किया कि पार्टी को और अधिक व्यवस्थित तथा गतिशील बनाने के लिए होने वाला महाधिवेशन सफल होगा। राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी राप्रपा ने आगामी मार्गशीर्ष 26 से 28 गति तक काठमांडू में महाधिवेशन आयोजित करने का निर्णय किया है। पार्टी अध्यक्ष राजेंद्र लिंगदेन की अध्यक्षता में कल और आज आयोजित केंद्रीय कार्य समिति की बैठक ने मार्गशीर्ष 26, 27 और 28 गति महाधिवेशन आयोजित करने का निर्णय किया है। ये जानकारी पार्टी के प्रवक्ता एवं प्रचार विभाग प्रमुख मोहन कुमार श्रेष्ठ ने दी। उनके अनुसार महाधिवेशन को सफलतापूर्वक सम्पन्न कराने के लिए अध्यक्ष लिंगदेन की अध्यक्षता में महाधिवेशन मूल आयोजक समिति का गठन भी किया गया है। इसके अलावा बैठक ने आगामी भाद्र माह के अंत तक जिला अधिवेशन संपन्न करने तथा आश्विन 15 से 24 गति के बीच सभी सातों प्रदेशों के अधिवेशन संपन्न करने का निर्णय भी किया है। सरकार ने महिलाओं को लक्षित करते हुए सभी सातों प्रदेशों में ब्लू बस सेवा शुरू करने की तैयारी आगे बढ़ाने की जानकारी दी है। सरकार की 100 दिवसीय कार्ययोजना के अनुसार महिलाओं के लिए सुरक्षित, सुविधाजनक और सम्मानजनक सार्वजनिक परिवहन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से निःशुल्क ब्लू बस सेवा संचालन की तैयारी की जा रही है। कार्ययोजना के तहत पहले चरण में 100 दिनों के भीतर कम से कम 25 बसों को संचालन में लाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसके अंतर्गत काठमांडू पत्रिका में साझा यातायात के सहयोग से कम 7 बसों को ब्लू बस के रूप में संचालित किया जाएगा। वहीं काठमांडू पत्रिका के बाहर सभी प्रदेशों के यातायात व्यवसायी संघों के साथ समन्वय करके कम से कम 18 बसों के संचालन की तैयारी की गई है। ब्लू बस सेवा शुरू होने के बाद विशेष रूप से छात्राओं, श्रमिक महिलाओं, कर्मचारियों तथा प्रतिदिन सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करने वाली महिलाओं को सुरक्षित और सुविधाजनक यात्रा का माहौल उपलब्ध होने की अपेक्षा भी की गई है। आगामी आर्थिक वर्ष में सभी सातों प्रदेशों में ब्लू बस सेवा के संचालन के लिए आवश्यक बजट और कार्यक्रम का भी प्रस्ताव किया गया है। सरकार ने आगामी आर्थिक वर्ष में अतिरिक्त 15,776 हेक्टेयर कृषि योग्य भूमि तक सिंचाई सुविधा का विस्तार करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। ऊर्जा, जल स्रोत तथा सिंचाई मंत्रालय ने सिंचाई विस्तार, नदी नियंत्रण तथा राष्ट्रीय गौरव की परियोजनाओं के कार्यान्वयन को उच्च प्राथमिकता में रखा है। वर्तमान में देश भर में कुल 15,87,910 हेक्टेयर भूमि तक सिंचाई सुविधा पहुँच चुकी है। सिंचाई योग्य भूमि में से 5,32,090 हेक्टेयर भूमि ऐसी है जहां वर्ष भर सिंचाई सुविधा उपलब्ध रहती है। कृषि योग्य भूमि में लिफ्ट सिंचाई और जलाशय आधारित सिंचाई की सुविधा 5,671 हेक्टेयर क्षेत्र तक पहुंच चुकी है। ऊर्जा, जल स्रोत तथा सिंचाई मंत्री बिराज भक्त श्रेष्ठ ने जानकारी दी कि निर्माणाधीन तथा मरम्मत एवं रखरखाव की आवश्यकता वाले परियोजनाओं को भी समान प्राथमिकता दी जा रही है। मंत्री श्रेष्ठ ने बताया कि सिंचाई क्षेत्र की पुरानी तथा रणनीतिक महत्व की परियोजनाओं को समय पर पूरा करने पर विशेष जोर दिया गया है। आप रेडियो नेपाल से हिंदी समाचार सुन रहे हैं। बस थोड़ी देर विज्ञापन।
1: नेपाल टेलीकॉम को 4G

0: जी। नेपाल टेलीकॉम, राष्ट्रको संचार।
1: अब बाकी समाचार। महोत्तरी की बर्दीवास नगर पालिका ने बाल विवाह को कम करने तथा कानूनी उम्र में विवाह करने वाले जोड़ों को प्रोत्साहित करने के लिए 51,000 रुपये नगद प्रोत्साहन राशि देने का निर्णय किया है। अब 20 वर्ष की आयु पूरी करने के बाद विवाह करने वाले नगर पालिका क्षेत्र की बेटियों को 51,000 रुपये नगद प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी। ये व्यवस्था नगर पालिका की 18वीं नगर सभा में आर्थिक वर्ष 2083-84 के लिए प्रस्तुत नीति तथा बजट कार्यक्रम के माध्यम से सार्वजनिक की गई है। राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने वर्षा और समृद्धि के देवता माने जाने वाले रातो मच्छिंद्रनाथ की भोटो यात्रा का आज अवलोकन किया। पारंपरिक सांस्कृतिक विधि के अनुसार ललितपुर के जावला खेल में आयोजित विशेष समारोह में शामिल होकर उन्होंने यात्रा का अवलोकन किया। राष्ट्रपति पौडेल ने रातो मच्छिंद्रनाथ के साथ साथ जीवी देवी कुमारी के भी दर्शन किए। हर वर्ष रातो मच्छिंद्रनाथ का रथ जावला खेल पहुँचने के चौथे दिन राष्ट्राध्यक्ष की उपस्थिति में भोटो दिखाने की परंपरा है। अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। ईरान में युद्ध की देखरेख करने वाले खातम अल अंबालिया मुख्यालय ने घोषणा की है कि हॉर्मुज स्ट्रेट को जहाजों के लिए बंद किया जा रहा है। हालांकि अमेरिका ने ईरान के दावों का खंडन किया है। बीबीसी फारसी सेवा के मुताबिक खातम अल अंबिया मुख्यालय ने अपनी इस घोषणा के पीछे अमेरिका के साथ हुए युद्ध विराम समझौते की शर्तों का उल्लंघन करने का कारण बताया है। इसके अलावा दक्षिणी लेबनान में ईरान इसराइल की ओर से लगातार युद्ध विराम का उल्लंघन और लेबनान के सैकड़ों हजारों लोगों का क्रूर जनसंहार और विस्थापन को भी इस घोषणा का कारण बताया गया है। ईरान के रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर नौसेना ने कहा है कि हॉर्मुज स्ट्रेट सभी जहाजों के लिए बंद कर दिया गया है। नौसेना ने इसका कारण अमेरिका और इसराइल पर युद्ध विराम के उल्लंघन के आरोपों को बताया है। इस सप्ताह की शुरुआत में अमेरिका और ईरान के बीच हुए एक समझौते में युद्ध समाप्त करने के लिए 14 बिंदुओं की रूपरेखा तय की गई थी। IRGC ने सभी जहाजों को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा, हॉर्मुज स्ट्रेट के करीब न आए वरना आपकी सुरक्षा खतरे में पड़ जाएगी। खातम अल अंबिया मुख्यालय ने दक्षिणी लेबनान से इजरायली सैनिकों की वापसी कराने में असफलता का भी जिक्र किया है। अब मौसम। अगले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 29 से 31 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 19 से 20 डिग्री सेल्सियस के बीच में रहने की संभावना है। पिछले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 27.3 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस रहा। अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी रासोपा का प्रथम महाधिवेशन कल से चितवन में होगा शुरू। रासोपा के नेता और महाधिवेशन प्रतिनिधि चितवन पहुंचने का क्रम है जारी। रासोपा लोकतंत्र से कभी विमुख नहीं होगी, पार्टी सभापति रवि लामिछा ने का कथन। राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी राप्रपा का आगामी महाधिवेशन 26 से 28 मार्गशीर्ष तक काठमांडू में आयोजित करने का केंद्रीय कार्य समिति का निर्णय। आगामी आर्थिक वर्ष में 15,776 हेक्टेयर भूमि तक सिंचाई सुविधा का विस्तार करने का सरकार का लक्ष्य और ईरान ने हॉर्मुज स्ट्रेट बंद करने का किया ऐलान। IRGC ने दी चेतावनी। रेडियो नेपाल से प्रसारित रात 10 बजे के हिंदी समाचार समाप्त हुए। रात 11 बजे आप सुनेंगे नेपाली में समाचार। नमस्कार, शुभ रात्रि।
2: फोर जी LTE मोबाइल सेट संबंधी नेपाल टेलिकम को सूचना। नेपाल टेलिकमले देशभर VoLTE सहितको अत्याधुनिक 4G LTE नेटवर्क विस्तार गरिरहेको हुनाले 4G गुणस्तरीय इन्टरनेट तथा कल सुविधा प्राप्त गर्नका लागि नयाँ मोबाइल सेट खरिद गर्दा सेटले LTE ब्यान्ड 20 800 मेगाहर्ज र VoLTE सपोर्ट गर्ने यकिन गर्नुहुन अनुरोध गरिन्छ। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको संचार।
3: अनन्त सम्भावनाको पुञ्ज, गतिशील मानव जीवन, कर्मशील सारा संसारका नेपाल र नेपाली मन,
4: दूर सुदूर क्षितिजका नेपाली अनुभव शब्द चित्रमा कोर्दै स्वदेशको सम्झना र परदेशको अनुभव सुन्ने सुनाउने एउटा चौतारी कार्यक्रम घर देश परदेश। कार्यक्रम घर देश परदेशमा स्वागत छ। म प्रस्तुता हेमन्त उप्रेति। विश्वव्यापीकरणसँगै यातायात र सूचना प्रविधिको विकासले अझ साँगुरो हुँदै गरेको आजको संसारमा रोजगार, स्वरोजगार, वृत्ति विकास, शैक्षिक प्राज्ञिक उन्नयन, तिनको प्रयोग उपयोग र सुविधामय जीवनको आकांक्षामा मानिस संसारभर फैलिँदो छ। नेपालीहरू मात्र यसमा अपवाद छैनन्। कर्मक्षेत्रमा जहाँ जहाँ रहे पनि स्वदेश र जन्मभूमिप्रति सदा कृतज्ञ रहने नेपाली मनहरूका स्वदेश विदेशका जीवन अनुभवहरू खोतल्ने एउटा प्रयास हो कार्यक्रम घर देश परदेश। सार्वजनिक सेवा प्रसारण रेडियो नेपालको केन्द्रीय प्रसारणबाट हरेक शनिबार राति 10 बजेको समाचारपछि यो कार्यक्रम प्रसारित हुन्छ। साथै रेडियो नेपाल .com र रेडियो नेपाल मोबाइल एपमा पनि यो कार्यक्रम संसारभर सुन्न सकिन्छ। आजको कार्यक्रममा हुनुहुन्छ प्राध्यापक डाक्टर तुलसी धरेल। पुर्ख्यौली धादिङमा जन्मी चितवनमा हुर्की सन् 2000 क्यानाडा पुग्नुभएका धरेल क्यानाडामा प्रतिष्ठित प्राध्यापक, चार्टर मार्केटरका साथै बहुसांस्कृतिक सामाजिक अभियन्ता हुनुहुन्छ। सेन्टेनियल कलेज टोरन्टोमा प्राध्यापनरत धरेलले Top 25 क्यानेडियन इमिग्रेन्ट्स अवार्ड प्राप्त गर्नुभएको छ भने क्यानेडियन मल्टिकल्चरल काउन्सिलका अध्यक्षको भूमिका पनि निर्वाह गरिसक्नु भएको छ। एक समय मंगोलियामा प्राध्यापन र मंगोलिया सरकारको मार्केटिङ एडभाइजरको उच्च पदमा बसेर धराशायी हुन लागेका उद्योगहरूलाई पुनर्जीवन दिने काममा लाग्नुभएका धरेल मंगोलिया सरकारको अनरेरी मेडलबाट सम्मानित हुनुहुन्छ। पीएचडी सकेपछि जिल्लातिरै फर्केर राजनीति मार्फत देश सेवा गर्ने इच्छा राख्नुभएका धरेल तर पुग्नुभयो क्यानाडामा प्राध्यापक हुन। एनआरएनए क्यानाडाका संस्थापक सदस्य धरेल थुप्रै स्वदेश विदेशका समाजसेवी संस्थाहरूसँग सम्बद्ध हुनुहुन्छ। सन् 1992 लियो क्लबको राष्ट्रिय अध्यक्ष हुँदा 3,00,000 हस्ताक्षर सहित सार्वजनिक स्थानमा धूमपान निषेधको अभियान चलाएको स्मरणीय रहेको उहाँ बताउनुहुन्छ। पारिवारिक रूपमा क्यानाडा पुग्नुभएका धरेल सुरुमा त्यहाँ क्लिनिङतिर केही सामान्य काम पाइन्छ कि भनेर काम खोज्दा तत्काल अपेक्षै नगरेको कलेजमा पढाउने जागिर पाएको कुरा सम्झना गर्नुहुन्छ र त्यो पर्यटकहरूमाझ नेपाल र नेपालीहरूप्रति रहेको राम्रो छवि र उच्च भावनाले भएको भन्ने आफ्नो अनुभव रहेको एक प्रसङ्ग पनि सुनाउनुहुन्छ। त आदरणीय श्रोता, आज सुनौं विगत करिब 27 वर्षदेखि क्यानाडामा रहनुहुने चार्टर्ड मार्केटर, नेप्लिज मार्केटिङ एसोसिएसनका संस्थापक मानार्थ सदस्य तथा अन्तर्राष्ट्रिय सल्लाहकार प्राध्यापक डाक्टर तुलसी धरेलसँगको अन्तरङ्ग कुराकानी। एकैछिन एउटा सङ्गीतबाट अघि बढौँ, त्यसबीच कुराकानी जोड्नेछौँ।